0: 107 FM रेनबो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, FM रेनबो पर।
0: तो दोस्तों एफएम रेनबो पर नॉन स्टॉप गपशप का समय हो गया है, यानी कि ढेर सारी बातें, कुछ DIY टिप्स, आज के दिन की कुछ खास खबरें और साथ ही साथ जबरदस्त लेटेस्ट गाने भी। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे भी तो मॉनसून के बारे में जानकर, यानी कि मौसम का हालचाल। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में मॉनसून ने काफी जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जून को दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। कई इलाकों में 7 से 20 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश दर्ज भी की जा सकती है, और मौसम विभाग के इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के मौसम का हाल कैसा रहने वाला है हमारे शहर कोलकाता में। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में आसमान में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, साथ ही साथ दोपहर या शाम के समय कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी है, और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान रहा 29.7 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता रही 92% और न्यूनतम आर्द्रता रही 60%। साथ ही साथ मछुआरों के लिए चेतावनी भी है भाई, 18 जून से 21 जून 2026 के दौरान पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा तट के आसपास समुद्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जो कभी कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसलिए मछुआरों को

इस अवधि में समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही साथ जो भी हमारे दोस्त दीघा, मंदारमनी ये सब तटवर्ती इलाकों में घूमने गए हैं, जरूरत है उन्हें भी थोड़ी सावधानी बरतने की। फिलहाल मौसम का हाल चाल तो हमने जान लिया। नॉन स्टॉप गपशप में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं हमारा पहला गाना।

0: कल्चर।
1: चलिए अब कोलकाता से जुड़ी थोड़ी आसपास की खबरें ले ली जाए। राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा को वैश्विक स्तर पर और अधिक पहचान दिलाने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत दुर्गा पूजा से जुड़े विभिन्न संगठनों और आयोजनों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा और पर्यटन से जुड़े ढांचे को मजबूत करने पर जोर भी दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य देश विदेश से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाना और बंगाल की

0: WBJEE 2026 के परिणाम घोषित करने की तिथि की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने बताया कि इसका WBJEE 2026 के परिणाम 18 जून यानी कि आज आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाएंगे। परीक्षा के लगभग एक महीने बाद राज्य में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक हजारों उम्मीदवारों का लंबा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। तो ये था दोस्तों कोलकाता कल्चर।
1: कोलकाता कल्चर
0: बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं हमारा एक और जबरदस्त गाना।

0: तो दोस्तों, इस जबरदस्त गाने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक चुटकी नुस्खे।
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: बहुत बहुत स्वागत है आज नॉनस्टॉप गपशप के अंतर्गत एक चुटकी नुस्खे में, जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाले छोटे छोटे उपाय लेकर आते हैं। और मैं आपकी दोस्त पापिया, और आज हम बात करने वाले एक ऐसे विषय की जो सीधे हमारे रसोई, हमारे जेब और हमारी धरती तीनों से जुड़ा हुआ है। जरा बताइए कि आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि फ्रिज खोलते ही कोई डिब्बा आपको घूर कर कह रहा हो, याद दिला रहा हो कि भाई साहब मुझे 3 दिन पहले खाना था,

0: या फिर शादी ब्याह में प्लेट भर भर कर खाना लेने के बाद आधी प्लेट यूं ही छोड़ दी गई हो? अगर जवाब हाँ है तो आज का दिन आपके लिए ही बना है, क्योंकि आज है 18 जून जब मनाया जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे यानी सतत खान पान दिवस। अब घबराइए मत, नाम सुनकर लग रहा होगा कि आज कोई बहुत भारी भरकम ज्ञान मिलने वाला है, लेकिन असल में इसकी बात बड़ी आसान है। जो खाना हमारी थाली में आता है उसका सम्मान करना, उसे बेवजह बर्बाद ना करना और ऐसे खान पान की आदतें अपनाना जो हमारी धरती के लिए भी अच्छी हो, यही है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को इसलिए मान्यता दी ताकि लोग समझ सके कि हमारी थाली और पर्यावरण का रिश्ता बहुत गहरा है। तो दोस्तों, एक टमाटर हमारे रसोई तक पहुंचने से पहले खेत में उगता है, उसे पानी मिलता है, किसान मेहनत करता है, उसे बाजार तक पहुंचाया जाता है, यानी एक छोटी सी सब्जी के पीछे भी बहुत सारे संसाधन और मेहनत छिपी होती है। और फिर जब वही सब्जी या भोजन कूड़ेदान में चला जाता है तो सिर्फ खाना नहीं बल्कि पानी, ऊर्जा, समय और मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो आज इस विषय से हमारे एक चुटकी नुस्खे में का क्या रिलेशन है, बताएंगे जरूर, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गाना।
1: धाड़ धा धिन्ना

वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पायल, इट वॉज ब्यूटिफुल. हाँ बिल्कुल, आप भी अच्छे से रहिएगा, वापस मुलाकात होगी आपसे. ओके बाय. तो ये थी पायल और बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर. और साथ ही साथ हम चलते हैं अब सीधे दूसरे नुस्खे की ओर, जो है बचा हुआ खाना. अगला सुपरस्टार, जी हाँ, रात की दाल बच गई उसे सुबह दाल पराठा बना सकते हैं. रोटी बच गई, रोटी नैचोस, रोटी उपमा या रोटी रोल बना सकते हैं. चावल बच गए, लेमन राइस, फ्राइड राइस या कटलेट तैयार. यानी बचे हुए खाने को बेकार नहीं, तैयार, एकदम तैयार चीज़ समझिए. जी हाँ, फिलहाल चुटकी दूसरे नुस्खों के बारे में बात ज़रूर करेंगे, किस तरह से खानों को सही तरीके से हम लोग उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में. पर फिलहाल सुन लेते हैं अगला गाना.

तो दोस्तों बातें हो रही थी हमारी एक चुटकी नुस्खे में किस तरह से भी खान पान की चीजों को कम वेस्ट किया जाए, तो इसी बात पर नुस्खे नंबर 3 की ओर चलते हैं। जब हमें वो कुछ यूं है कि खरीदारी से पहले 5 मिनट की प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बाज़ार जाते हैं आलू लेने और लौटते हैं 5 तरह के स्नैक्स, 3 ऑफर वाले पैकेट और 2 ऐसी चीज़ें लेकर जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए घर से निकलने से पहले एक छोटी सी सूची बना लें, इससे पैसे भी बचेंगे और खाना ख़राब होने से भी बचेगा। और नुस्खा नंबर 4 क्या है पता है? मौसम का खाना सबसे सुहाना। जी हाँ, गर्मी में आम, तरबूज और खीरा, सर्दी में गाजर, मटर और सरसों। मौसमी चीज़ें सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होती बल्कि उन्हें उगाने में अपेक्षाकृत कम संसाधन भी लगते हैं। हमारी दादी नानी बिना सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी शब्द जाने ही इस सिद्धांत पर जीते थे। तो आपके पास है किस तरह की खाने की चीज़ों को बचाने का नुस्खा? अगर है तो फिर ज़रूर बताइए हमें। फ़िलहाल आगे के नुस्खों के बारे में भी चलिए बात कर ही लेते हैं। बचपन में दादी नानी कहती थी कि थाली में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय ये सिर्फ संस्कार लगता था, लेकिन आज वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ भी यही बात कर रहे हैं, जितना खा सके उतना ही ले। ये आदत भोजन की बर्बादी कम करने का सबसे आसान तरीका होता है। वहीं छोटा सा किचन गार्डन और बड़ा सा फायदा, अगर बालकनी या खिड़की के पास थोड़ी सी जगह है तो धनिया, पुदीना, करी पत्ता या हरी मिर्च उगा कर देखिए। खाने में ताजगी भी आएगी और प्रकृति से जुड़ाव भी होगा। फिलहाल अब दिल कर रहा है कि एक और गाने से हम अपना जुड़ाव बढ़ाएं। श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के आवाज़ में सुनते हैं हैप्पी न्यू ईयर से हमारा अगला गीत।

0: लिए नहीं, उसको सेफ करके, ताकि इतने सारे लोग बीच में रहते हैं, उन लोग का घर, उनका छत नहीं है, तो एटलीस्ट उल्ले के बारे में सोचिए कि लोग खाना नहीं खा पाते तो दो वक्त का। तो जब हम लोग ऐसा सोचेंगे तभी ना हम लोग मतलब सोचेंगे कि चलो सेव करें।
1: On humanity grounds, एक empathy, एक sympathy, या फिर जो भी बोल लीजिए compassion, वो चीज़ रहना चाहिए कि हम इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, हम इतनी, और जो उगा रहे हैं सब्जियों को या फिर जो भी उसके पीछे लगे खाना जो है, कच्ची सब्जियां या फिर बोलिए चाल दावल जो भी उसको उगाने में लगे हैं, उनकी भी कितनी मेहनत जाती है, कितने सारे resources जाते हैं।
0: कि वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पर एग्रीकल्चर मेन सोर्स है
1: जी,
0: तो वो कितने दुनिया में कितने कंट्रीज है जहाँ पर एग्रीकल्चर मतलब कोई कल्टीवेशन होता ही नहीं है। तो वो लोग के बारे में सोचिए उन लोग का हालत क्या होगा, प्राइसेस से, इन्फ्लेशन से, सब कुछ। लेकिन हम लोग तो ब्लेस्ड है कि हम लोग के देश में ये है,
1: वी हैव सो मेनी सोर्सेज राइट हियर,
0: या वी हैव सो मेनी सोर्सेज, सो वी नीड टू सेव फूड।
1: So, thank you so much, Shubhu ji. Thank you so much. और कोई गाना सुनना चाहते हैं तो फिर आप प्लीज बता दीजिए फटाफट।
0: कोई भी, जैसे शाहरुख खान का फिल्म का कोई भी
1: गाना। शाहरुख खान का गाना अभी बजाया मैंने।
0: अच्छा ठीक है, तो अभी तो अच्छा
1: है। Anything else you want to like बोलना, मतलब request करना चाहते हैं?
0: मैं थोड़ा old school हूँ, तो मेरा पुराने जमाने का गाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि किशोर कुमार, मोहम्मद रफी।
1: तो लो आगे उनकी याद के लिए, यू आर परफेक्ट देन। मुकेश के बारे में बात
0: है, मतलब मेरा ना एक्चुअली क्या है, अभी के जो गाना है ना याद रहता है, दो लाइन भी याद नहीं रहता है, अनलेस एंड अंटिल इट इज सुपर्ब, लाइक मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड काइंड ऑफ। लेकिन जो पुराने गाने हैं, मतलब मैं इतना पुराना नहीं हूँ, मतलब आई एम फ्रॉम द न्यू जनरेशन, but still I love old songs.
1: Okay.
0: Old is gold.
1: For sure.
0: मतलब मेरे friends भी tease करते हैं कि अरे यार तू ये गाना नहीं जानता, ये गाना नहीं जानता। मैं actually नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे जो playlist है उसमें सब oldies है।
1: Okay. And it's okay not to know sometimes. आपके लिए अलग से डेडिकेट करेंगे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू,
0: थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस टॉपिक।
1: माय प्लेजर,
0: थैंक यू,
1: बाय बाय, विल मीट यू। तो ये थे शुभो जी, तो काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने, क्यों है ना। तो दोस्तों, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी कोई फैशन नहीं है, इसका मतलब हम में से कई लोग हैं जो इसके बारे में एक्चुअली सोचते हैं, और ये सोच है कैसी सोच है जो कि स्वाद और जिम्मेदारी साथ साथ लेकर चल सकती है। हम सब दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी थाली ज़रूर बदल सकते हैं। और याद रखिए, धरती को बचाने के लिए हमेशा बड़े बड़े कदम उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी एक बची हुई रोटी का सही इस्तेमाल, एक प्लेट कम बर्बाद खाना और एक समझदारी भरी जिंदगी भी बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आज के दिन खुद को एक छोटा सा वादा कीजिए, खाने का सम्मान करेंगे, बर्बादी कम करेंगे और अपनी रसोई को थोड़ा और समझदार बनाएंगे। और इसी खूबसूरत विचार के साथ आज एक चुटकी नुस्खे, बस इतना ही। ओके, मिलते हैं गाने के उस पार।
2: एक चुटकी नुस्खे।

आज के दिन। दोस्तों आज है 18 जून और आज का दिन एक बहुत खास संदेश लेकर आता है। आज मनाया जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे। जब हम प्राइड यानी गर्व की बात करते हैं तो इसका मतलब है खुद को स्वीकार करना, अपनी पहचान पर गर्व करना और ये समझना कि हर इंसान अपने आप में अनोखा है। ऑटिस्टिक प्राइड डे भी इसी भावना का उत्सव है। सबसे पहले समझते हैं कि ऑटिज्म है क्या। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक करना हो, बल्कि ये मस्तिष्क के काम करने का एक अलग तरीका है। ऑटिस्टिक व्यक्ति दुनिया को, लोगों को, परिस्थितियों को थोड़ा अलग ढंग से महसूस और समझ सकते हैं। कुछ लोग बातचीत में कठिनाई महसूस कर सकते हैं, कुछ लोग तेज आवाजें और चमकदार रोशनी से असहज लग सकती है, कुछ किसी विशेष विषय में अद्भुत रुचि और प्रतिभा रख सकते हैं। ऑटिस्टिक प्राइड डे की शुरुआत साल 2005 में हुई थी और इसका उद्देश्य लोगों को ये बताना था कि ऑटिज्म किसी की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि मानव विविधता का एक हिस्सा है। जिस तरह हर व्यक्ति का स्वभाव, सोच और व्यक्तित्व अलग होता है, उसी तरह न्यूरोलॉजिकल यानी मानसिक विकास के तरीके भी अलग अलग हो ही सकते हैं। अक्सर हमारे समाज में सामान्य होने की एक परिभाषा बना लेते हैं, लेकिन क्या सचमुच सभी लोगों का एक जैसा होना जरूरी है? शायद नहीं। दुनिया खूबसूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग विचार है और अलग अलग क्षमताएं भी हैं। कई ऑटिस्टिक लोग विज्ञान, कला, संगीत, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में शानदार योगदान दिया। उनकी एकाग्रता, बारीकियों पर ध्यान और अलग दृष्टिकोण कई बार ऐसे समाधान लेकर आते हैं जो दूसरों के लिए सोचना भी मुश्किल होता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे हमें ये भी सिखाता है कि हमें लोगों को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी संवेदनशीलता, थोड़ा धैर्य, थोड़ा सम्मान किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपके आसपास कोई ऑटिस्टिक बच्चा या व्यक्ति है तो याद रखिए, उसे दया नहीं बल्कि समझ और स्वीकार्यता की जरूरत है। हर व्यक्ति अपनी गति से सीखता है, बढ़ता है और दुनिया को समझता है। आज के दिन का संदेश काफी सरल है, अलग होना गलत नहीं, अलग होना भी खूबसूरत है। तो आइए इस ऑटिस्टिक प्राइड डे पर हम एक ऐसे समाज का संकल्प लें जहाँ हर व्यक्ति को उसकी पहचान के साथ स्वीकार किया जाए।

जहाँ विविधता का सम्मान हो और जहाँ हर आवाज को सुना जाए। बस इसी खूबसूरत विचार के साथ फिलहाल ये जो टॉपिक है ऑटिज्म का, यही पे समाप्त करती हूँ। बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं हमारा अगला गाना अलीशा चिनॉय की आवाज में।

0: साथ ही साथ दोस्तों 18 जून का दिन गोवा के इतिहास में क्रांति दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। जी हाँ, कैसे, चलिए बताते हैं आपको। साल 1946 की बात है, जब आज ही के दिन गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए पहला संगठित सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मरगांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर गोवा की जनता से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया। जी हाँ, उस समय तक ऑलमोस्ट ब्रिटिश जो थे वो छोड़ने का फैसला ले चुके थे इंडिया को, लेकिन पुर्तगाल पोर्टुगीज छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे इस बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था, पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बारे में सोचा। तो पुर्तगाली सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन स्वतंत्रता की चिंगारी भड़क चुकी थी। यही चिंगारी आगे चलकर उस जनसंघर्ष में बदली जिसके परिणाम स्वरूप 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। और इसी तरह से 18 जून केवल एक तारीख नहीं बल्कि गोवा की स्वतंत्रता यात्रा का वो अध्याय है जिसने आज़ादी की राह को नई दिशा दी। और इसी के साथ आज का जो आज के दिन यही समाप्त होता है।
1: आज के दिन,
0: और सच बताऊं तो नॉनस्टॉप गपशप का समय भी यही समाप्त होता है। अब जाने का वक्त हो चला है और सीधे मिलूंगी आपसे ठीक एग्जैक्टली 14 मिनट बाद लोआगे उनकी याद में, यानी कि एफएम गोल में, जहां आज याद करेंगे हम सिंगर मुकेश को। तो चलिए, अगर रिक्वेस्ट हो आपकी मुकेश के गाने सुनने के, तो डेफिनेटली फोन लाइंस खुली रहेंगी आप सभी के लिए। सुन सकते हैं अपने फेवरेट मुकेश के गाने और साथ ही साथ बातें भी कर सकते हैं उनके बारे में। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद 100.1 एफएम गोल पर, और फिलहाल 107 एफएम रेनबो से लेती हूँ विदा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर में शुरू होने वाला है अगला कार्यक्रम। और जाते जाते जबरदस्त सा गाना धूम 3 से।
2: You know that thing must be 100 years old.

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं दिल का तड़का, दिल का तड़का, दिल का तड़का, 107 FM रेनबो पर, दिल का तड़का, दिल का तड़का, दिल का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के द रियल रेडियो, जी हाँ 107 FM रेनबो पर हाजिर है आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का यानी कि ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। और इस ढलती दोपहरी में यानी कि जब ये दोपहर है ना करवट लेता है शाम की ओर, तब हम लेकर आते हैं आपके एनर्जी को रिवाइव करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए तीन का तड़का। और चलिए ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ शुरुआत करूंगी इस कार्यक्रम का इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म कपूर एंड सन से। अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाज में इस गीत को सुनेंगे। अभिरुचि चंद ने इसे कलमबद्ध किया है और संगीत से सवारा है अमाल मलिक ने।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने जिस गीत को सुना उसे हमने लिया था फ्रॉम द मूवी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। अमिताभ भट्टाचार्य ने कलमबद्ध किया इस गीत को और संगीत से सवारा प्रीतम ने अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में इस गीत को सुना आपने। और जैसा कि आप जानते हैं, तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का यानी कि टोटल इंफरटेनमेंट वाला प्रोग्राम जो कि जुड़ा है बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड से। और एंटरटेनमेंट का मतलब ही आप अगर बॉलीवुड का मतलब कहें तो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट का एक शब्द में मतलब जानना चाहें तो बस बॉलीवुड ही काफी है। वैसे मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पर छाया सरवरी का बर्थडे बैश। बॉलीवुड की उभरती हुई बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस सरवरी वाघ ने अपने जन्मदिन के जश्न की कुछ बेहद प्यारी और अनदेखी तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर की हैं। उन तस्वीरों में उनकी खुशी और चेहरे की मुस्कान साफ बयां कर रही है कि उनका ये बर्थडे कितना खास रहा। हालांकि एक्ट्रेस का जन्मदिन 14 जून को बीत चुका है, लेकिन उन्होंने अपने इस जश्न की खूबसूरत झलकियां हाल ही में फैंस के साथ शेयर की। तो अब इतनी बड़ी खबर जो छाई रही उसे भला मैं आपसे कैसे ना शेयर करती। अब अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म कॉकटेल से श्री नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज में।

आपने ट्यून कर रखा है म्यूजिकली योर्स, बोले तो दिल से दिल तक कनेक्ट होने वाला चैनल, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है 107 एफएम रेनबो में, और खास करके तीन का तड़का यानी कि हैशटैग दिल धड़का। और ऐसी बात है कि देखिए, दिल बहुत सारे कारणों से डरता मतलब धड़कता है, कभी कभी तो डर के मारे कुछ ज़्यादा ही धड़कता है। और वैसे मैं बता दूं कि बॉक्स ऑफिस पर भूतों का कब्जा, ये मैं नहीं कहती, ये हकीकत है, ये रियलिटी है। बॉलीवुड की दुनिया में दर्शकों की पसंद ही सबसे बड़ी कसौटी होती है। कोई फिल्म चलेगी या नहीं, इसका पूरा फैसला दर्शकों के हाथ में होता है। इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। अब लोगों को केवल मार धाड़ या रोमांस नहीं, बल्कि पर्दे पर कुछ ऐसा देखना है जो उनकी आत्मा को कपा दे। हाल ही में आई एक बड़ी फिल्म की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब सिनेमा घरों में भूतिया कहानी का दौर वापस आ गया है। बीते शुक्रवार रिलीज हुई एक हॉरर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि हर कोई हैरान है। सिर्फ चंद दिनों के अंदर इस फिल्म ने जो आंकड़े दिखाए हैं, उसने बड़े बड़े दिग्गजों को चौंका दिया है। 12 जून को सिनेमाघर में एक साथ तीन फिल्मों ने दस्तक दी थी। इसमें एक तरफ जहां मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ और वेदांग रैना जैसे कलाकारों से सजी फिल्म में मैं वापस आऊंगा रिलीज हुई, तो वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत की अहम भूमिका वाली भारत भाग्य विधाता भी मैदान में थी। इन दोनों ही फिल्मों से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस की जंग में बाजी किसी और ने मार ली। मीमो चक्रवर्ती और चेतना पांडे की भूतिया फिल्म ने बेहद खामोशी से इन बड़ी फिल्मों के हाथों से मोटी रकम बटोर ली। जहां अन्य फिल्मों के एक एक करोड़ रुपए की कमाई की कोशिश कर रही हैं ये फिल्में, वहीं इस हॉरर फिल्म ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चलिए, ऐसी बातें और खबरें तो ढेर सारी मैं आपको सुनाना चाहती हूं, लेकिन वैसे बता दूं 3:30 बजे से आपके लिए रहेगा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। और फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:22:52। और अब अगला गाना मैं सोच रही हूं क्यों ना आपको सुना दूं अरिजीत सिंह की आवाज में, तुझे कितना चाहने लगे हम।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:27:50, यानी कि आपको ये कहना पड़ेगा कि 3:30 से तैयार रहिएगा सुनने के लिए क्या स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। और ऐसा है कि हमारी और आपकी मुलाकात दोबारा होगी, कब? इसी चैनल पर जी, अजी वही दिल से दिल तक वाले चैनल पर, शाम को लेकर आऊंगी 7:02 पर कार्यक्रम छायालोक, और सेगमेंट रहेगा नजारा फिल्मों का। जी हाँ, रहूंगी आपके साथ 7:02 से लेकर 9:00 तक। ढेर सारे गाने, ढेर सारी मस्ती और

दिल से दिल का कनेक्शन तो रहेगा ही। और फिलहाल अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी जी, अभी जाऊंगी तभी तो शाम को आऊंगी। और इस बीच अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी है भैया, उसके लिए भी जगह है, आप ट्यून कर सकते हैं 100.1 FM गोल्ड, यानी कि हमारा खरा सोना वाला चैनल, और वहां पर 5:20 से लेकर 7 तक रहूंगी लेकर कार्यक्रम चायन क्लासिक्स। तो फिलहाल आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत को

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर गोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोड़ जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का

0: झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में 2 जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओ, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओ, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्वविख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारिए श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने

बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,

0: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ

0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
1: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
2: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो?
1: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
2: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
1: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
2: भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो हा? तुम मुझे नहीं जानती हो?
1: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो
2: हा?
1: मैं तुम्हें नहीं जानती।
2: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो।

0: तब?
1: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया, तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
1: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
0: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है, और

0: मुझे यह देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो।
1: हाँ।
0: रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
0: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, हा? बड़ी अच्छी बात है।
0: सेठ मुझे देर हो रही है।
1: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
0: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
5: माँ
2: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
5: क्या है बच्ची? उफ, क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
2: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़ी
2: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम और 4 बजे आप सुनेंगे 2 मिनट के लिए स्थानीय समाचार और उसके बाद के कार्यक्रम की घोषणा होगी।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: नजारा फिल्मों का

शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के द रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका पसंदीदा म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छायालोक। और छायालोक में थर्सडे इवनिंग सेगमेंट रहता है। हाँ जी, मुझे पता है कि आपको भी पता है, नज़ारा फिल्मों का है आज का सेगमेंट। और चलिए सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस गीत के साथ जिसे मैंने लिया है ओम शांति ओम से।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 7:10 और आपको मैं बता दूं कि 8 बजे तक, मतलब ये जो पहला गाना था दीवानगी दीवानगी, ये तो मतलब आपके, मतलब कहती हूँ ना म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम, तो जाहिर सी बात है कि आपके एनर्जी लेवल को म्यूजिकली अपलिफ्ट करना था। वैसे बता दूं कि अब से लेके 7 बजे 8 बजे तक जो गाने मैं प्ले करूंगी, मतलब मैक्सिमम क्या सारे गाने जो हैं वो या तो पिक्चराइज किए गए हैं नाव पर या क्रूज पर, यानी कि पानी, नदी, समंदर और क्या, बस उससे रिलेटेड गाने मैं आपको सुनवाऊंगी। और उसमें भी सबसे पहले आपको सुनवाऊंगी कहूं ना प्यार है फिल्म से इस गीत को।

बॉलीवुड फिल्मों में नौका, नाव, बोट और नदी का दृश्य बहुत गहरा और सिंबॉलिक महत्व है इसका। फिल्मों में गाने या फिर क्रूज कह लें, फिल्मों में गानों में नाव का उपयोग प्रेम, अलगाव, यात्रा और जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये नायक नायिका के बीच के रोमांस को एक शांत और प्राकृतिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। बॉलीवुड गानों में नौके के महत्व और इसके प्रभाव को जो है समझने के लिए आपको बहुत सारे मतलब गाने जो हैं वो देखे भी होंगे, जो पिक्चराइज हुआ होगा बोट पर, क्रूज पर, और समझ भी रहे होंगे, हाँ दिली दिल मुस्कुरा रहे होंगे। और मतलब क्या ही कहूँ, मतलब बोट पर इतने सारे गाने फिल्माए गए हैं कई सारे हीरो हीरोइन के साथ कि मतलब अगर आप याद करें तो थोड़ी बहुत गुदगुदी तो आपको होगी ही, और ये होती है म्यूजिकल गुदगुदी। रोमांस और एकांत का प्रतीक जो नाव की सवारी और नायक की नायिका को दुनिया के शोर से दूर एक शांत और एकांत माहौल देती है। यहाँ वे खुलकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। अब जैसे कि मैं क्या कहूँ, आपको याद दिलाना चाहती हूँ फिल्म, उस फिल्म के बारे में जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 1964, कश्मीर की कली का। इस फिल्म का जो मशहूर गाना ये चांद सा रोशन चेहरा, डाल झील के शिकारा नाव में फिल्माया गया था, जो सदाबहार रोमांटिक गानों का प्रतीक बन गया। तो चलिए देर ना करते हुए मैं फटाफट वो गाना सुनवाती हूँ आपको।

0: म्यूजिकली योर्स पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर राजस्थान से राकेश गिरी गोस्वामी जी, और मतलब क्या कहूँ, इतने ज्ञानी गुनी हैं और शायद ही कोई फील्ड है जिस पर उनको नॉलेज नहीं है। और चलिए सुनते हैं उन्हीं से कि आज जो हमने सेगमेंट लिया है नज़ारा फिल्मों का, इस सेगमेंट में जो हमारा विषय है कि बोट से जुड़ी हुई जो गाने हैं वो बॉलीवुड में क्या इम्पैक्ट रखती हैं और क्या उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है और मतलब उसके महत्व से जुड़ी बातें इनसे जानेंगे। हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार।
0: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर कार्यक्रम छायालोक में। और ऐसा है सर कि हमारा आज का जो विषय है नज़ारा फिल्मों में वो ये है कि बॉलीवुड फिल्मों में देखा गया है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि नाव हो, क्रूज हो, मतलब नदी हो, इससे जुड़ी बहुत सारे गाने बने हैं। तो इस पर तो आप बताएंगे ही, लेकिन पहले ये बताइए कि आपके हॉबीज क्या क्या हैं।
1: देखिए मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन तो जियोलॉजिस्ट हूँ, और मेरी हॉबी क्या है, फोटोग्राफी है, ट्रेवलिंग है, मैं ट्रेवल ब्लॉगर भी हूँ
0: जी,
1: और मेरे ब्लॉग्स कई वेबसाइट्स पर आते हैं, ट्रेवल के ब्लॉग आते हैं। मैं अपने स्टेट के ट्रेवल स्पॉट्स को, उनकी कल्चर को, उनके रिचुअल्स को अपने ब्लॉग के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। और मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे भी, प्रिंट मीडिया में भी मैं आर्टिकल वगैरह लिखता रहता हूँ।
0: चलिए सर ये तो बहुत बड़ी बात है, और जब आप कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो सुनने वाले भी, उनको भी मतलब वो भी इंस्पायर होते होंगे, सुनकर मोटिवेट होते होंगे। अब ये बताइए कि बॉलीवुड और नाव का जो सिलसिला है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे।
1: देखिए ये सिलसिला बहुत पुराना है
0: जी,
1: नाव में कोई गाना हो, बोट में गाना हो या क्रूज पे गाना हो, तो ये गाना जो है ये सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है। इसमें क्या जीवन के कई पहलू होते हैं, तो जीवन के जो भावनात्मक पहलू है, जो लाइफ के इमोशंस है, वो सारे इन गानों में हमारे आते हैं। जैसे कोई गाना है सन 2000 का, कहो ना प्यार है मैं, प्यार की कश्ती में, तो ये यूथ का गाना है
0: जी।
1: ये यंग एज के जो टीनएजर्स हैं, यंग एज के लोग हैं, उनके इमोशंस का, उनके उनके सेलिब्रेशन का गाना है। चलो दिलदार चलो, तो मैच्योर लोगों के इमोशन का गाना है। 1960 में दिल अपना प्रीत पराई आई, जिसमें गाना है अजीब दास्तां है ये, वो एक सैड इमोशन का गाना है कि हीरोइन है उसकी बहन, उसकी सहेली की सगाई किसी और से तय हो जाती है, तो वो उनको बधाई देती है लेकिन उसके चेहरे पर जो है सैडनेस दिखाई देती है। इसी तरह हम देखें कि एक फिलोसॉफिकल गाना है फिल्म खुशबू में, जितेंद्र पे फिल्म आया हुआ
0: जी, जी।
1: वो मांझी रे नदिया किनारा, तो वो लाइफ की फिलोसॉफी को दर्शाता है, एक मैच्योर आदमी कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है। इसी तरह संगम फिल्म आई थी 1964 में, उसका गाना है ओ महबूबा, तो वो रोमांटिक गाना है, दो जनों के रोमांस का गाना है। इसी तरह एक गाना आया था नदिया चले चले रे धारा, वो भी
0: मन्ना डे का,
1: लाइफ की फिलोसॉफी का गाना है। एक 1967 में फिल्म आई थी दिल ने फिर याद किया, तो वो मैच्योर लोगों के थॉट्स का गाना है, उनकी इमोशन का गाना है। इसी तरह हम देखते हैं कि 1958 में एक फिल्म आई थी डिटेक्टिव, उसमें गाना है आंखों पे भरोसा मत कर, तो वो एक उसको हीरो जो है हीरोइन को थोड़ा सा सलाह दे रहा है, थोड़ी सी एडवाइस दे रहा है। तो ये इस तरह लाइफ के जो इमोशंस हैं, अलग अलग एंगल्स हैं, ये सभी बॉलीवुड के गानों में हमको देखने को मिलते हैं।
0: चलिए सर आपने बहुत कुछ बड़े विस्तार में कहा जो विषय हमने लिया उस पर, और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपने मतलब बिजी शेड्यूल से ही आप समय निकालते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
0: तो चलिए दोस्तों अब इसी बात पे आपको मैं सुनवाती हूँ शहनशाह तरन्नुम, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पाकीज़ा से ये गीत।

चलिए दोस्तों, अगला गाना आपको सुनवाने से पहले बता दूं कि अगला गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी फिल्म खुशबू से। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1975 और काफ़ी मशहूर गाना है ओ माझी रे अपना किनारा। और इस फिल्म को और इस गाने को ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि में शूट किया गया था, जहां अभिनेता जितेंद्र को नदी में जो है नाव पर गाते हुए और अभिनेत्री हेमा मालिनी को जो है नदी के किनारे पर दिखाया गया था। गायक किशोर कुमार, संगीतकार आर डी बर्मन और गीतकार गुलजार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह

11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

म्यूजिकली योर्स पर इस वक्त आप सुन रहे हैं म्यूजिकल एनर्जी बूस्ट प्रोग्राम छायालोक में सेगमेंट नजारा फिल्मों का। और आज नजारा फिल्मों का मैं जो गाने इस सेगमेंट में सुनवा रही हूं वो सारे के सारे गाने कहीं ना कहीं नदी से, बोट से, क्रूज से रिलेटेड हैं। और इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं, अगला गाना मैं आपको सुनवाऊंगी फिल्म मैंने प्यार किया से। हाँ हाँ, फिल्म का नाम कहते ही आपको याद आ गया होगा कि वो कौन सा गाना है जिसमें बोट भी दिखाया गया था और बोटिंग भी करते हुए दिखाया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि वो गाना था दिल दीवाना बिन सजना के। और इस गाने की शूटिंग मुख्य रूप से ऊटी तमिलनाडु के खूबसूरत और प्राकृतिक स्थानों पर तो की गई थी, और ऊटी लेक में जहां नाव बोट वाले जो सीन फिल्माए गए थे। तो चलिए, इतना तो आप समझ ही गए। और अब आप कहेंगे कि और ना बताओ, बस गाना सुना दो जल्दी से। तो चलिए सुनवाती हूँ आपको।

0: Amore mio, dove sai tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

इस बेहद खूबसूरत गीत को आपने सुना फिल्म द ग्रेट कैमलर से। इसे कलमबद्ध किया था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने और आवाजें थी अमिताभ बच्चन, शरद कुमार और आशा भोसले की। मतलब क्या ही कहूं इस रोमांटिक गीत को वेनिस के प्रसिद्ध कैनल ग्रैंड कैनल में एक चलते हुए गोंडोला नाव पर फिल्माया गया था। इस गाने में अमिताभ बच्चन और जीना तमान मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। और अब आपको बता दूं, 8 बजे आप सुनेंगे 2 मिनट के लिए स्थानीय समाचार और इस बीच जो शेष समय बचा है उसमें मैं आपको सुनवाऊंगी फिल्म मोहब्बते से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में अगला तराना, जिसे कलमबद्ध किया है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने और आवाजें हैं जैसा कि मैंने कहा लता और उदित की। और देर न करते हुए चलिए वो गाना आपको सुनवाती हूं मैं।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के द रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर। हाँ जी, ये वही चैनल है जहां हम और आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हैं, दिल से दिल तक का हमारा रिश्ता है और जुड़ते भी हैं हम दिल से दिल तक। जी हाँ, आप सभी 7 बजे से सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक नज़ारा फिल्मों का, आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और तहे दिल से एक बार फिर न्यूज ब्रेक के बाद आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और अब 8:02 से लेकर 9 बजे तक नजारा फिल्मों में मैं उन गानों को आप तक पहुंचाना चाहूंगी 107 एफएम रेनबो, यानी कि हमारा जो म्यूजिकली योर्स वाला चैनल है ना, इसी के जरिए आप तक पहुंचाऊंगी वो गाने जो कि पहाड़ों पर और बर्फ पर जो है फिल्माए गए हैं अलग अलग जगह पर। तो शुरुआत में करना चाहूंगी फिल्म चांदनी जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 1989। जी हाँ, बेहद लोकप्रिय गाना उसमें था, तेरे मेरे होठों पर मीठे मीठे गीत मितवा। मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में फिल्माया गया था। इस रोमांटिक गीत के दृश्यों को एल्प्स के बर्फीले पहाड़ों और क्या कहूँ, मतलब जो उसके नज़ारे थे वो आपको तो याद आ ही रहे होंगे, आपके जहन में आपको वो गाना याद आ रहा होगा, वो दृश्य याद आ रहा होगा। तो क्यों ना संग में सुन भी लिया जाए उस गीत को। बाबला और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को सुने।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 8:10 और फिलहाल आपने ट्यून कर रखा है म्यूजिकली योर्स वाला चैनल और सुन रहे कार्यक्रम नजारा फिल्मों का आपकी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और अगला गाना मैं सुनाना चाहूंगी उस फिल्म से, मतलब क्या कहूं, उस फिल्म का हर एक डायलॉग इन टोटैलिटी, फिल्म जो है ना बड़ी सुपर डुपर हिट रही थी और कई पुरस्कारों से भी नवाजी गई थी, उसी फिल्म से अगला गीत ये हसीन वादियां एसपी बाला सुब्रमण्यम और एस चित्रा की आवाज में। इस गीत को कलमबद्ध किया था पीके मिश्रा ने और संगीत बद्ध किया था ए आर रहमान ने।

चलिए दोस्तों, अगला गाना जो आप सुनेंगे, मैं बता दूं कि उसे हमने लिया है फिल्म कभी कभी से। फिल्म रिलीज हुई थी 1976 में, अमिताभ बच्चन और राखी पर फिल्माया गया ये सदाबहार गीत। कश्मीर की बर्फी माने बर्फबारी के बीच जो है शूट किया गया था। और क्या, बस चलिए सीधे गाना सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

फिल्म ये जवानी है दीवानी में गाना था सुभान अल्लाह। 2013 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण का ये रोमांटिक ट्रैक कश्मीर की वादियों और बर्फीली पहाड़ों का नज़ारा जो है इस गाने में पेश किया गया था।

अगला गाना जो है उसके लिए फरमाइश किया है किसने, उल्बेरिया से सुमित्रा मानना ने। उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि मतलब मैं कार्यक्रम सुन रही हूँ और मुझे चूंकि पहाड़ों पर जाना बहुत पसंद है और चूंकि कार्यक्रम जो है वो 8 से 9 पहाड़ों पर ही बेस्ड है नज़ारा फिल्मों का में, और ऐसे में अगर आप वो गाना मुझे सुना दे तो बेहद खुशी होगी। तो मैंने पूछा कि कौन सा गाना, तो उन्होंने कहा हुस्न पहाड़ों का, राम तेरी गंगा मैली का ये गाना वो सुनना चाहती हैं। तो चलिए मैं वो गाना प्ले करती हूँ। सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को सुनेंगे आप।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन ए। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
2: पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छायालोक आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो यानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के दी रियल रेडियो पर अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 8:36 और 41 सेकंड और अभी 8 बजे से 9 बजे तक, यानी कि एग्जैक्टली अगर कहूँ नहीं तो कोई इसमें भी कह पड़ेगा कि 2 मिनट का तो न्यूज़ भी

तो मैं बता दूं 8:02 से लेकर 9 बजे तक उन गानों को मैं प्ले कर रही हूं जिनका पिक्चराइजेशन जो है पहाड़ों से रिलेटेड, बर्फ से रिलेटेड, पहाड़ों पर हुआ था। हो सकता है कि पूरा का पूरा गाना नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा उसका पहाड़ों पे भी जो है पिक्चराइज किया गया था। तो एक क्लासिक गाना सुनवाना चाहूंगी आपको इसी से संबंधित, याहू चाहे मुझे कोई जंगली कहे, फिल्म जंगली से 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, शमी कपूर पर फिल्माया गया था ये गीत। बर्फ पर नाचे जाने वाले सबसे बेहतरीन गानों में से एक माना जाता है उनका। और वैसे बता दूं उनका डांसिंग स्टाइल जो था वो कुछ गजब का ही था, कुछ अलग सा ही था, और कोरियोग्राफरों के बस की बात नहीं थी। तो चलिए वो गीत आपको मैं सुनवाती हूँ शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

0: रहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: अगले गाने के जरिए मैं आपको ले चलती हूँ कश्मीर।

हमारे है कार्यक्रम शेष होने तक आज के लिए। और फिलहाल मैं बता दूं कि अगला गाना जो आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म केदारनाथ से। लोकप्रिय गीत काफिराना की शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित केदारनाथ धाम, त्रियुगी नारायण, गरुण चट्टी और चोपता की हसीन वादियों में की गई थी। तो भला ये गाना सुनाना कैसे भूल सकती हूं आपको। अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में इस गीत को सुनिए।

स्टूडियो की घड़ी में समय है वो चला है 8:53 और 46 सेकंड और अब थोड़ी ही देर में कार्यक्रम को मुझे विराम देना पड़ेगा आज के लिए। और ऐसा है दोस्तों कि हमेशा की तरह यही कहूंगी कि मतलब आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और चारों तरफ खुशियों के फूल खिलाते रहें। और अब चलते चलते आप सभी के लिए एक खूबसूरत सा गीत छोड़े जा रही हूँ। फिल्म का नाम है आ गले लग जा। किशोर कुमार की आवाज़ में इस गीत को सुनेंगे। बड़ी खूबसूरती से कलमबद्ध किया है साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। इस गीत को सुनते सुनते, जी हाँ, इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी आज ही फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को। चलते चलते यही कहूँगी, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।